0: नेशनल सिटी हॉस्पिटल
1: अत्याधुनिक सुविधा संपन्न भवन र प्रविधि सहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेशनल सिटी हॉस्पिटल
2: विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवाहरू
3: वरिष्ठ युरोलोजी एवं जनरल सर्जरी डाक्टर निर्मल लामिछाने र डाक्टर योगेन्द्र देवकोटा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति विधान र डाक्टर संगीता पौडेल
2: पेट कलेजो तथा आन्द्रा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वरुण श्रेष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मला लक्ष्मी श्रेष्ठ नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिलीप कर्मचार्य
3: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीपमान वैद्य र डाक्टर योगेश राज पन्त
2: महिलामा हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिनुमा श्रेष्ठ र डाक्टर मन्जु पाण्डे
3: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रौनियार
2: फिजिसियन डाक्टर गौरीराम महतो
3: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सेनाई
2: हार्ड जोर्नी नसा तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील अधिकारी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

मध्यनेपाल नगरपालिका ऐन तारखाप वर्ष ऐन लागे मई 65,83,00,000 बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी दिएर सहयोगी कर्मचारी महिना 15% बर्दी मेमो लमजुङगरी तारखबा आर्थिक वर्षरी कृषि गण्डकी प्रदेश सहायता 18 शीर्षकरी मोई खैमु देख्यू बर्दी बा लिसुयु गाईखुरी झरनरी नासथेमे पर्यटकमय बर्दिसी याइमु दे राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस ऐन अवसरदी बाउन्डरारी वृक्षारोपण कार्यक्रम लैमु तारङ्गेदु तायो फेते लमजुङगरपै मध्य नेपाल नगरपालिका जी तारखापा आर्थिक वर्ष ऐन लागे 65,83,72,623 रुपियाँ बराबर मोई सार्वजनिक लैम नगर सवारी तारखापा आर्थिक वर्ष लागि प्रस्तुत लबा अनुमानित आय व्यय सहित मुई नगरपालिका जी चलिबा दिएर पुँजीगत तर्फरी तलब फत्ता लगायत पे प्रशासनिक खर्च लागि 10,99,00,000 विनियोजन लैम चलायो नेपाल सरकार त क्या यो अब सशस्त्र तर्फ चालु दिएर पुँजीगत कार्यक्रम सञ्चालन लबै लागि 35,46,00,000 रुपियाँ मुई छुटेम समापूरक अनुदान नोर्वे बाङ्री नेटक्या कार्यालय जोड़ दिव क्या लगे संघीय सरकार दे नगरपालिक साझेदारी 2,26,00,000 रुपया मई विनियोजन लैम चौमध्य नगरपालिक जी मत 1,13,00,000 छुटे प्रदेश समापूरक कार्यक्रम नोर्वे थापा नासदे वडा कार्यालय जुर्दीव क्या लगे गण्डकी प्रदेश सरकार दिएर नगरपालिक साझेदारी 1,20,00,000 रुपियाँ मुई व्यवस्था लैम बाङ्री बेसी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनेवा योजना लागि 40,00,000 बहुप्राविधिक शिक्षा लैन लागि 13,00,000 विनियोजन लैम वडा स्तरीय दिएर कार्यक्रम ऐन लागि तायो वडा दिए 35,00,000 ऐन दर्जी 3,50,00,000 रुपियाँ मुई छुटेवा दिएर विभिन्न क्षेत्रगत योजना कार्यक्रम दिएर नगर स्तरीय योजना दिएर विपद व्यवस्थापन केन लागि 10,52,87,623 रुपियाँ छुटे नगरपालिका सामुदायिक विद्यालय बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी दिएर सहयोगी कर्मचारी महिला 15% तलब बर्दिमेवा कोषडा समेत लैमु चुइन लागि नगरपालिका 17,75,000 रुपियाँ मई विनियोजन लैम गण्डकी प्रदेश सरकारजी लमजुङगैना लागि तारखाबा आर्थिक वर्ष लागि कार्यान्वयन तब लैमरे कृषि री 20 शीर्षक रे मुई विनियोजन लैम कृषि विकास कार्यालय लमजुङगैना लागि विभिन्न प्रकृति 18 कार्यक्रम लागि 3,00,00,000 रुपियाँ मुई विनियोजन लैम प्रदेश सरकारजी सार्वजनिक लबा तारखाबा आर्थिक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम दिएर योजना अनुसार लमजुङगै लागि 2,95,00,000 रुपियाँ मुई विनियोजन लैम ओल्ग्या खिताब रे फ्रीबा अनुसार जिल्ला रे कृषि विकास कार्यालयदेखि ताई फण्डले मुई समुदाय स्तरले प्रशोधन योग्य खयान आलु उत्पादन दिएर प्रवर्धन कार्यक्रमै लागि छुटेम जो कार्यक्रमै लागि मात्र यो 60,00,000 रुपियाँ मुई विनियोजन लैम छलैयौं तारखाबा आर्थिक वर्षैना लागि कृषि विकास कार्यालयदेखि फलफूल बगैंचा बने बढेर छ्याबा लबै लागि 45,00,000 रुपियाँ मुई छुटेछु विषया प्रवर्धन कार्यक्रमै लागि 33,00,000 रुपियाँ व्यवस्था लैम सुरक्षा कार्यक्रममै लागि 20,00,000 रुपियाँ विनियोजन दस्युम विषया व्यावसायिक तरकारी खेती लागि 15,00,000 रुपियाँ मुई छुटे सुम विषया कृषि उद्यम विकास कार्यक्रममै लागि 15,00,000 रुपियाँ मुई छुटे चलाए जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्धन कार्यक्रम प्रारम्भिक मल शुभा दिएर ग्रामीण पर्यटन कृषि पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रम रैथाने दिएर नासथेमी बाल विकास कार्यक्रम आकस्मिक सेवा दिएर राहत कार्यक्रममै लागि 10,00,000 रुपियाँ मुई व्यवस्था लबा ओल्गे खिताब रे फ्रेम चो बाहेक प्रदेश सरकारजी आत्मनिर्भर लबै लागि प्लो चुवा प्रवर्धन कार्यक्रममै लागि 7,70,000 दिएर आईपीएम कृषक पाठशाला सञ्चालन लबै लागि 7,50,000 रुपियाँ मुई छुटे लमजुङगर वैष्णव नगरपालिका एक अर्मुबा दलाल अर्मुबा गाईखुरे झनरी बर्खा सुरु तपदे बालयो क्यू बर्दिसी यासुमु क्यू बर्दी बदे बालयो नासथेमा पर्यटक महिना चहल पहल समेत बर्दिसी याइमो चण्डायो 70 मिटर खुवाइदेखिया तिबा मनमोहक झरनारी बर्खा थोबा बर्खरी थप आकर्षक रूप किबा तपतैमरे चुरी दिदैनिकारी सयौं अन्तरिक पर्यटकमा चुरी थनिबा लमो डुम्रे बेसर क्यानोरी पर्दिबा
चु झरनारी सजिलो थोनिल खावा कारण नासथेमे पर्यटक महिना रोजाइरी पर्दिमा नासथे महिना सम्झना परियार अनुसार त्यही दिन उसो मात्र सुनसान पारे तरिपचो झरनारी क्यु बर्दीबती बालयो दिनरी पदस्थ क्या सयजनासम्म पर्यटकमा खबरलाई म छर्नैन टिस सोक्योरी तबै क्लोइमारी तबै लागि पौडी क्लोबै लागि फोटो खिचिपा दिएर भिडियो खिचिपा दिएर सामाजिक सञ्जाललाई लागि सामानमा तयार पारिदिबै लागि फ्रेसिमे चुरी थनी बल्लभा थिजीबी म राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसै अवसरहरी सगरमाथा वृक्षारोपण महाअभियान नोरी लमजुङप्रे मर्सङ्गी नासापालिको ५६ डलर मुभा चिसापानी सामुदायिक थेरी हरित उद्यान वृक्षारोपण कार्यक्रम छि म डिभिजन वन कार्यालय लमजुङजी आयोजनालय खबचु कार्यक्रमले धुपी जामुना लालीगुराँस लालुपाते लगायत पार्क थप छ्यामा बने भए लागि विभिन्न प्रजाति भए तुमै रुई म डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका रूपे प्रमुख दिवा प्रसाद पण्डितजी वृक्ष हिमैना जीवनैना आधार तब तैमले चु संरक्षण दिएर वृक्षारोपण अपहारी आर्य मोबाइल भी म सिन्दुर रुईबा दिएर प्रदूषण नियन्त्रण लभ प्राकृतिक माध्यमै रूपारी किल खाबा थिजी बी म मर्सिन्दी छर्बवडा अध्यक्ष मिन्दासी तमोजी जन्मदिन वृक्षारोपण लभ अभियानले सन्देशमूलक दिएर प्रेरणादायी मोबा उल्लेखलाई मरे हरित उदान बनिबा पूर्वधारा के छिटै छिन लभा प्रतिबद्धता व्यक्तलाई म जन्मदिनले सामाजिक सेवाले जोड़दिबा उद्देश्यले बालौ रायनास नगरपालिका छ दमेली कुवारबे सुदीप मल्लदेर रेखा मल्लजी सर्वदेव सेवा समृद्ध सहयोगलाई म मल्ल दम्पतीजी थिएन छ श्रेया मल्लैन जन्मदिन अवसरारी १४,655 रूपियाँ मूल सहयोगलाई म श्रेयन बुझ्यो सीता मल्लदेर थिएन परिवार सदस्यमय बालु तैमरी रायनास नगरपा आठार मुभा सर्वदेव सेवा समृद्ध मुभा ज्येष्ठ नागरिक फलफूल जोस चौचौ बिस्कुट दे बालो केही जमिबा दिएर अरू व्यवस्थापन लभै लागि चु सहयोग लभ आश्रम भए प्रचार प्रसार समेज लक्ष्मी प्रसाद मिश्रजी भीम तारखबा आर्थिक वर्ष 83-84 लागि मुई प्रक्रिया पूरा तै मुई पेश लभ कानूनी रूपमा पिबा न्यौलो विधेयक आर्थिक विधेयक 2083 दिएर राष्ट्र ऋण किबा विधेयक 2083 आइतबार प्रतिनिधि सभाले पारितलाई म आर्थिक विधेयक करैन दर छुट आयकर लगायत व्यवस्था लमु चु विधेयक पास तबलिसु मात्र मुई उल्लेखित राजस्व रेल यो वा कानूनी आधार यो म छलय छेकीबा विधेयक सरकारजी छेकीबा युवा अधिकारी पिमो मुइना खर्च धान्दीबा अन्तरिक देर बाहिर छे रेवा विधेयक चैदिमो चुन्याउलो यो पास तबलिसो कार्यान्वयन कानूनी आधार तयार तम बैठक गरी आर्थिक विधेयक बहुमजी पारित ललुम विषया ऋण किमा छेकिमारी विधेयक सर्वसम्मत रूपारी पारित लबा विधेयक संशोधन दिएर अरू सांसद मेजी रेवा कोही प्रश्न हैन अर्थमन्त्री सोनी वाग्लेजी जवाब पिम मर्सङ्गी फेटी तोखोबे लागि छु गयो फेटी छिउँ भन्दा वैसो कर्पी फेटी फेरि तिखे।

मध्यनेपाल नगरपालिकाले तारखापा वर्षैना मुई 65 करोड़ 83 लाख बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी दे र सहयोगी कर्मचारी न पारिश्रमिक भत्ता मुई तलब 15% बढ़िमी बताइम लमजुङगरी तारखापा आर्थिक वर्ष दे कृषि दे गण्डकी प्रतिशत 18% मुई खैम खबतैम दे क्विन बाढ़ बदे बालयो गाई खुरे छे नासथेम पर्यटक महिना चहल पहल पर्दिम नानर खबर तमुकी मर्सिङदी फेटे तकोबे लागि छिजी प्राविधिक चुडीबे से धन्यवाद बिमारी फेटेको छ क्याङ खुसीमाय तमुसियो बिदा किमु रेडियो मर्सिङदी 95 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सिङदी .org यदि दलत ओ छ्याजलो

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: कति छ है तुकुम नारालाई है
1: आदरणीय
2: नमस्ते नानीमै
3: नमस्ते
0: दाई
3: स्वागत मुनि थप्रे नासर
0: धन्यवाद
3: अनि खनेजी खैजी नानीमै
0: निकास किबे धम्पुसा नासर पोटो खवा दाई

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 95

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: समीचो 14 के में बोदे लोटी पड़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता खे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर भर दिल
2: आगे समीचो लोटी पड़ी छाई गुरी
1: भर दी आ भर दी लोटर खाली पड़ दी बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनई बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप विवरण खाई मई आपिन खबई बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप बने आरी
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
5: विगत लामो समयदेखि संचालित लमजुङकै पुरानो र स्थापित जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसल जिल्लामा नै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय हलमार्क एवं मान्यता प्राप्त तिसा ज्वेलर्स एण्ड डायमण्डसँगको सम्बद्धतामा विभिन्न प्रकारका हिराका आकर्षक गरगहना सहित अब हजुरहरूको सेवामा
6: कम्प्युटर तौलमा आधुनिक मेसिनबाट कटिङ गरिएका तयारी तथा अर्डर अनुसारका आकर्षक गरगहना खरिद बिक्री तथा कुनै पनि पसलबाट किनेका गरगहना सार्फेट गर्नु परेमा साथै राशि अनुसारका पत्थरहरूको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्
5: प्रोपाइटर बहादुर विश्वकर्मा जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसल बेसी शहर नगरपालिका साथ लमजुङ सम्पर्क फोन 066-520-209

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.